0: कौन से मेरे कैबिन स्पीति?
1: मेरे कैबिन स्पीति का
0: कौन से की शो मेरे कैबिन स्पीति ऑन सीन
1: स्पीति आई एम शोइंग ऑन सीन.